0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन

0: जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे, यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति

0: विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हाटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

0: श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: Working to strengthen each other's...
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार

0: करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में PV सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 8:15. జనరంజని శ్రోతలు ఫోన్ ద్వారా కోరిన సినీ గీతాలు

0: द स्काई इज पिंक इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, रचना थी गुलजार की, संगीतकार प्रीतम।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: तुम बिन टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आर्को और साथियों की आवाजों में मनोज मुंतशिर के बोल थे।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

रांझणा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे जसविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।

डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। गुलजार के बोल थे, विशाल भारद्वाज का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

सार बीबी और गैंगस्टर 3, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे नूरा सिस्टर्स अमित गुप्ता और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनकी गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें।

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपिंदर सिंह।

0: मुझे।
1: भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12-स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आर डी बर्मन से हुई, और उसके बाद आर डी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आर डी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया, बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

0: बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।
1: ए आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आर डी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हस्त

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रीति।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते थे।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण।
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 10 గంటలు కొన్ని క్షణాల్లోనే వార్తలు వింటారు.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय

0: अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां।

के अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार यह हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रही हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदूर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

ईद मुंशा ईद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की, और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दम्बा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है।

चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगर फिल्म का यह गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगर फिल्म का यह गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा को, लासी गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदुर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान, आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाही गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ, मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ। मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता, वो आया कि नहीं?
0: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया, तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फो नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा?
1: अरे बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ। वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है? अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, हैं?
0: हाँ, और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक

0: नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
1: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
2: बाय बेटा।
1: सब लोग।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
1: हाँ हाँ, देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
1: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी, ये बिरयानी है या खिचड़ी? वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
1: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
1: जिसने बनाया है ना, उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
1: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है, न बर्तन। अब तेरी माँ भला कितना खटेगी? बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा?
1: अरे, आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आज बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
1: जी हाँ, वो तो है।
4: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है। बाद में मत कहने की पापा सूरी नमस्कार नहीं हो रहा है।
1: तो पापा, शुरू बस करिए है, नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
1: हाँ,
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
1: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
3: हाँ।
1: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
3: अरे बहू, हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया, तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी?
0: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देती है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे? लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
0: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ हाँ, सुना सुना सुना।
0: तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ,
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूँगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
1: अम्मा, अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
3: हाँ।
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
3: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
3: अच्छा,
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
4: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी। अम्मा
0: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
3: हाँ हाँ, कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
4: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
1: हाँ।
4: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
1: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
4: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था।

0: ताकि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
1: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
2: ओ मम्मा, बुरे की बात बताइए ना।
1: हाँ, अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम न आदम चात। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
2: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
1: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
2: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
1: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
2: हाँ।
1: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
0: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
1: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
0: हाँ।
1: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता है, इतनी दूर था।
0: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया। हाँ?
2: क्या, घर लाने का?
0: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
3: पापा, पापा, पापा।
0: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
0: अरे क्या है बताओ।
3: पापा, पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारे कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। I think he is lost.
0: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
0: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
0: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
0: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा
1: ठीक कह रहे हैं,
3: कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
0: देखते हैं भूखा तो है, सोचने दो।
1: हाँ।
0: अच्छा काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
1: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
0: हाँ।
1: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया। ठीक है, ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
0: अरे हाँ लगा लिया है।
1: सैनिटाइजर रखिए भाई।
0: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
1: तुम वहाँ क्या करोगे?
0: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
1: कमाल है आप तो।
0: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
0: हाँ तो चल चल चल,
1: डरोगी नहीं, ये क्या है
3: मम्मा, प्लीज।
0: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद।
0: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
1: ठीक है, ध्यान रखना अपना।
4: तो बोल, कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
1: अम्मा
5: ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए।

0: ये सोने के पहले वाली और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है। बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी है बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए।
1: इतनी रात को लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
1: हाँ मम्मा,
0: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
1: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर

0: हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
1: हेलो।
0: हाँ
1: मम्मा।
0: तुम लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं।
1: अरे मम्मा, उड़कर थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है, मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों बोला?
1: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
1: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
1: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
2: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई। अम्मा आप फिकर क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
2: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
2: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
2: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
2: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
2: हाँ।
0: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
2: हाँ हाँ देख देख
0: ठीक है,
2: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
2: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
1: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
0: हाँ,
1: हम
0: हाँ?
1: जो कटोरा लाए थे ना, मैंने हाँ? उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
2: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
0: हाँ, अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
2: अरे डर रहा होगा ना शायद।
1: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रही है।
0: पता नहीं कब से प्यासा था, और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम। हाँ। तुम लोग आसमान में टंगे हो?
1: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
2: हाँ, बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको, जमीन आसमान का मतलब यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं। जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़।

0: होने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी। रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
1: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
0: कह तो रहा हूँ, जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
1: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
2: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
1: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं? हा?
3: हाँ मम्मा, सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस। लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर दे वर रनिंग, यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा टू देयर नेटिव प्लेसेस। मामा दे वर एस्केपिंग माइग्रेटिंग।
1: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
3: हाँ टीवी जैसा ही, पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
1: अच्छा,
3: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
1: अच्छा,
3: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
1: अच्छा,
3: जितने वो सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
1: क्या,
3: यू नो पापा ने क्या किया?
1: क्या?
3: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
1: अच्छा,
3: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
1: हैं? हाँ हाँ हैरान, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
1: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
1: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं, कोई बात
1: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो,
0: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
1: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
0: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो, जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बच्चा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ न सरकार, न अमीर न गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
0: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था, ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
1: आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जागते हुए।
0: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत, जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
1: हाँ।
0: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या,
0: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है, और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
3: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
2: क्या गूज़ हो जाते हैं, क्या बक रही है?
0: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज़बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
2: हाँ हाँ
3: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
2: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ।

0: सकता है, मर जाएगा।
1: अरे
0: मर
1: नहीं जाएगा। दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
0: हाँ तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
1: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
0: हाँ,
1: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
0: हाँ।
1: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
2: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई
3: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
2: बिल्कुल।
3: उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
2: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। भाई ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
2: है। बस बस बस शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
1: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
4: गुड़िया,
1: अरे आप जाग रही हैं?
4: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
1: इज इट? हाँ क्या अच्छा, बात है।
4: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
1: हाँ हाँ नानी, आप सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
4: बिल्कुल खुश।
1: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
4: हाँ बेटा जरूर आएगी।
1: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
3: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
1: हाँ।
3: तो जानती हूँ मैंने क्या किया?
1: क्या बताया पापा?
3: दूध लाया।
1: हाँ?
3: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
5: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
3: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
1: क्या बात है!
3: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
1: इज इट
3: बंगाली संदेश?
1: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
3: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
1: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और धे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी। निर्देशक अमरकांत दुबे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: Signs, lights, sound, camera, action.
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन की दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई, फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री, तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है। पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
2: को मिलाया है
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख, तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
2: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही फिल्में बनाने के?
3: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
2: जी।
3: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है, और जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास

0: वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते। पैसा है, लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं।
1: सबसे बड़ा संदेश,
0: सबसे बड़ा जी।
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म एनएफडीसी की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब ओटीटी पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक पहुंची है
0: ओटीटी की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं,
1: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी है,
0: मार्केटिंग के लिए। जी
1: तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
1: जी।
0: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
1: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
0: बिल्कुल नहीं, और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो हैं हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर
0: जरूर
1: आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
1: आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा जी। तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे

0: फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूं
1: जी
0: और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे, उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो
1: जी
0: पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉल्स्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद्र, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जी जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को
0: जी
1: जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही हैं, तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं। तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ, कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं
1: नहीं
0: हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं,
1: जी जी
0: क्योंकि संसार दोनों से चलता
1: जी
0: है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये। पुरुष के हाथ में, जब पुरुष सत्ता थी या है, तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था। लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी, आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का
0: जी।

0: आपकी लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: है, दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप

0: से सक्षम हो और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो। ये होना
1: वहां
0: चाहिए,
1: उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जी। अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आड़े?
0: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है तब से हास होने लगा है
1: जी।
0: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना? तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो पुरी साहब करेंगे। पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पियेंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना? अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है
1: जी। बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए
1: जी। आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती
0: जी।
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए
0: जी। मेरी पसंद का गीत है
2: जानवा।

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: ऑफबीट, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो

0: बहुत हसीन थी।
1: मधुबाला
0: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
1: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
0: जी जी,
1: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए आपकी कला के लिए घातक।
0: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
1: बहुत सुंदर
0: जी,
1: आंखें बोलती थी उनके,
0: जी
1: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं, निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक
1: है,
0: कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं
1: जी,
0: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है, लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने अच्छे
1: कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, में लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
1: बहुत सुंदर गाना है, चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी।
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड। तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी,
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी,
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम

0: क्यों नहीं आना चाहे? मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया
1: जी।
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी,

0: झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो
1: जी।
0: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं और वही चंदा हैं और वही शरीफ भाई हैं और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई, है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये, यूं गुजरी अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हम
0: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में लिया,
1: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही है। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहां पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है। और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूं, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूं। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे, पहली बात। जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं,
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते हैं, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खासतौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे।

0: ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
1: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस
0: जी
1: कार्यक्रम का।
0: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, एलपी का म्यूजिक है। न जा अब कहीं न जा,
1: दिल के सिवा।
0: दिल के सिवा।
1: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की कि वो अपने अंदर नज्म व ज़ब्त, लगन और मकसद पर मबनी कायदाना सलाहियतें पैदा करें। हैदराबाद में तेलंगाना शुहदा की यादगार पर वज़ीर पूनम प्रभाकर, MLC कोदंडाराम और दीगर शख्सियात ने अवामी शायर आंदे श्री को उनके योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आंदे श्री के गीत जया जया है तेलंगाना की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने अलहदा रियासत की तहरीक को एक नई जिला बख्शी। इसके बाद जहदकारों को तस्लीम करने के लिए कायम करदा कमेटी ने जहदकारों, शोरा और फनकारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया ताकि उनकी तजावीज़ हासिल की जा सकें। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि कमेटी गुज़िश्ता 15 दिनों से आरा जमा कर रही है ताकि मौजूदा हुकूमत के तहत तहरीक के तमाम शुरका को मुनासिब शिनाख्त और एहतराम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने बताया कि बोनाल त्यौहार के सिलसिले में हमडा ग्राउंड्स पर मुनक़िदा रिवायती ख़ानदानी पेशों के मेले को हैदराबाद के शहरियों की जानिब से ज़बरदस्त रद्द अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने ख़ानदानों से अपील की कि OBC कारीगरों की मदद के लिए इस इतवार को 60 स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस 15 रोज़ा नुमाइश का ज़रूर दौरा करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के ताउन से शुरू इस इकदाम का मकसद रिवायती दस्तकारी, हैंडलूम और नामियाती मसनूआत को बराह रास्त मार्केट फराहम करना है ताकि हज़ारों कारीगरों के ख़ानदानों को रोज़गार मिल सके और तेलंगाना के सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना ने तालीमी साल 2026-27 के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स अकेडमियों और इलाकाई हॉस्टल्स में दाखिले के लिए 20 से 28 जुलाई 2026 तक सिलेक्शन ट्रायल्स मुनक़िद करने का ऐलान किया है। ये ट्रायल्स अंडर 10 से अंडर 18 तक के मखसूस उम्र के ज़ुमरों के बासलाहियत लड़कों और लड़कियों के लिए खुले रहेंगे। साइकिलिंग, हॉकी और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए होने वाले इन ट्रायल्स की निगरानी मखसूस कमेटियों के ज़रिए की जाएगी। IIT हैदराबाद का 15वां कॉन्वोकेशन मुनक़िद किया गया जिसमें रिकॉर्ड 1,398 तलबा को डिग्रियां हवाले की गईं। ये तकरीब कई अहम संग मेल की गवाह बनी जिसमें IC डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में BTech और IIT डेक्कन जॉइंट डॉक्टोरियल प्रोग्राम के पहले बैच की तकमील करने वाले शामिल हैं, जबकि इस मौके पर 49 मेडल्स भी दिए गए। मेहमान खसूसी डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम और दीगर हुकाम ने ग्रेजुएट्स पर जोर दिया कि वह कौमी तरक्की में अपना रोल अदा करें। जनगांव के कलेक्टर संदीप कुमार झा ने 39 नौ मंजूर शुदा प्री प्राइमरी स्कूलों में इंस्ट्रक्टर्स और आयाओं के तखर्रुर के लिए कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा तहरीरी इम्तिहान की निगरानी की। इंस्ट्रक्टर की मुलाजमतों के लिए 269 मुकामी दरख्वास्त गुजारों में से 254 ने इम्तिहान में शिरकत की जबकि 15 गैर हाजिर रहे। इसी तरह आया की मुलाजमतों के लिए 152 दरख्वास्त गुजारों में से 139 हाजिर रहे और 13 गैर हाजिर पाए गए। हैदराबाद और रिवेन्यू हुकाम की जानिब से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए हासिल करदा 650 एकड़ अराजी की फेंसिंग की कोशिशों के दौरान शमसाबाद के बहादुरगढ़ में मुकामी अफराद और किसानों के साथ तसादुम हो गया। मुजाहरीन ने हुकाम का रास्ता रोक कर RDO से सख्त बहस व तकरार की। संगामारे के दौरान एक किसान बेहोश होकर गिर पड़ा जिसके मुकामी अफराद में मजीद बरहमी देखी गई। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने स्काई रूट के तारीखी विक्रम 1 रॉकेट के कामयाब लॉन्च की सताइश करते हुए इसे मुल्क के नौजवानों के लिए एक अजीम तरगीब करार दिया जो इन्हें निडर होकर नई इख्तिरात करने की राह दिखाएगी। वज़ीर-ए-आला ने हुकाम को सख्त हिदायत जारी की है कि वह गजाई अशिया और अद्वियात में मिलावट के खात्मे के लिए इंतहाई सख्त और नया मिलावट मुखालिफ कानून मंजूर करे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मुलाजमतों की फराहमी के दावों पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को खुला चैलेंज दिया और ऐलान किया कि अगर हुकूमत के दावे सच साबित हुए तो वह सियासत से हमेशा के लिए सिबकदोश हो जाएंगे। इसी के साथ ही आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें यहीं ख़त्म हुईं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई

0: रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रपंचंलो ఎక్కడున్నా వివిధ భారతి ప్రోగ్రామ్స్ వినాలనుకుంటున్నారా? It's simple. Ventane News on Air app download cheskuni, live radio icon click chesi, VB Telugu select cheskuni, non-stop music and entertainment ni enjoy cheyandi. Vivid Bharati Akashvani Telugu తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वह भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की

0: रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई, हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए, गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो, कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चचुंडर कॉकरोच मक्खी चीटियां मच्छर आदि पनपते हैं और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुँह में जाते हैं जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया कॉलरा निमोनिया पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए, इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों आपके सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए, किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है, इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए और ये सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों आपके सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: साफ सफाई इंसान की फितरत होती है, वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सड़क अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही

आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक

0: अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथाकादु को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमुई तौर पर तफरीह फराहम करने के लिए काल्की 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम-1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की अम्बात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासिरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाकये पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
3: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाकये के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत आला ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस मकाम का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का इजहार करते हुए मरने वालों के

0: लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। पांचों माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाकये की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर आवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
2: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कुरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी में जुमा गाज के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF कैंप का दौरा किया और BSF के अहलकारों के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने पौधे भी लगाए और प्रहारी सम्मेलन में शिरकत की। सरहदी इलाकों को मुस्तहकम करने, पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन, नीज अमन कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर अजम HD देवेगौड़ा की अहलिया चेनम्मा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चेनम्मा को उनकी इंकिसारी और माशरे की खिदमत के उनके जज्बे के लिए याद किया जाएगा। वजीर अजम ने मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में वो जनाब देवेगौड़ा और उनके पूरे कुनबे के साथ हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि चेनम्मा अपने कुनबे के लिए मजबूती, वक़ार और पुख्ता अजम की अलामत थीं। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत के इजाले के तहत शिकायतों को निपटाने से आगे कार्रवाई की जानी चाहिए और पेंशन याफ्ता अफराद की तशवीश और उनकी उमंगों पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। डॉ सिंह ने कहा कि पेंशन से मुतालिक तनाजियात इंतजामी तरीके से हल किए जाने चाहिए ताकि पेंशन याफ्ता अफराद को अदालतों से रुजू करने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में पेंशन मुकदमात के बारे में दूसरी कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। ईरान के कानूनी उमूर और बैन अलावामी उमूर के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमरीका पर समझौते की खिलाफवर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ऐलान किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए इस्लामाबाद मुफाहमतनामे के तहत अपने वादों और अहद को मुअत्तल कर दिया है। ईरान के मीडिया के मुताबिक जनाब गरीबाबादी ने कहा कि तरफेन मुजाकरात कर रहे थे, लेकिन अमरीका ने बकौल उनके जारहाना कार्रवाई करके मुफाहमतनामे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफवर्जी की है। अमरीका और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर हमले किए। आबनाई हुरमुज के मामले पर लड़ाई में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता 2 दिन में खारे पानी को साफ करने के प्लांट पर ये दूसरा हमला है, जिससे कुवैत में तशवीश बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो तकरीबन 90% पानी के पीने के पानी के लिए इसी तरह के प्लांट्स पर इन्हिसार करता है। بڑھتی موسمیات میں

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधी।

यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपिंदर सिंह।

दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनके गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया।

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सबके बीच भूपिंदर सिंह।

भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आर डी बर्मन से हुई, और उसके बाद आर डी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आर डी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी

एल्बम था वो जो शायर था, पर आज भूपिंदर की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपिंदर के गिटार की। पंचम के साथ भूपिंदर के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12-स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्ण।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आरडी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

0: सत्ते पे सत्ता, आहा क्या गाना है। इस गाने में गिटार भूपिंदर ने बजाया था।
1: तुमने वो क्या देखा

आर डी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

आर डी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना कविता अमृता प्रीतम

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाया।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।